0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, जहाँ मान सरोवर का अर्थ है हमारा मन या हमारी चेतना, जो भक्ति और ज्ञान के निर्मल जल से लबालब भरी हुई हैं। हंसा केली कराही, हंस यानी हमारी आत्मा, जब आत्मा इस ज्ञान के पवित्र सरोवर में पहुंच जाती हैं तो वह वहाँ केली यानी क्रीड़ा करने लगती हैं, आनंद में झूमने लगती हैं। अगली पंक्ति उस तृप्ति का प्रमाण है। मुक्ताहल मुक्ता चुगे, हंस का स्वभाव है कि वह मोती, यहाँ मुक्ताहल का अर्थ है मुक्ति का फल। कबीर कहते हैं कि जब आत्मा को अपने भीतर ही मुक्ति के मोती मिल जाते हैं, जब उसे परम आनंद का अनुभव हो जाता है, तब अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह हंस उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, अब दुनिया के कंकड़ पत्थर उसे लुभा नहीं पाते। यह दोहा हमें सिखाता है कि जिस दिन आपको अपने अंदर का सुख मिल गया, उस दिन आप बाहर की दुनिया के गुलाम नहीं रहेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं कि असली तीर्थ आपके भीतर है। जब आपका ध्यान अंतर्मुखी होकर स्वयं में टिक जाता है, तब आपको वह सब कुछ मिल जाता है जिसे आप सात समंदर पार खोज रहे थे। दोस्तों, आज खुद से पूछिए, हमारा मन कहाँ कहाँ उड़कर भटक रहा है? क्या हम अब भी बाहर की छोटी छोटी चीज़ों में सुख के मोती ढूंढ रहे हैं? आज कोशिश कीजिए थोड़ी देर मौन रहकर अपने भीतर के उस मान सरोवर को महसूस करने की। याद रखिए, जब तक आप बाहर की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे, प्यास बनी रहेगी। जिस दिन आप अपने भीतर डूबेंगे, उस दिन आपको वो मोती मिलेंगे कि फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी उड़ान आपके भीतर ही समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपले खानदेश आपली माणसं।

इस भजन में प्रत्येक पंक्ति में एक सुंदर शिक्षा दी गई और इस भजन को सुनने का आनंद तभी है, तभी कोई अर्थ है, इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

सपना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा

मिले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल हम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, जहाँ मान सरोवर का अर्थ है हमारा मन या हमारी चेतना, जो भक्ति और ज्ञान के निर्मल जल से लबालब भरी हुई है। हंसा केली कराही, हंस यानी हमारी आत्मा, जब आत्मा इस ज्ञान के पवित्र सरोवर में पहुँच जाती हैं तो वह वहाँ केली यानी क्रीड़ा करने लगती हैं, आनंद में झूमने लगती हैं। अगली पंक्ति उस तृप्ति का प्रमाण है। मुक्ताहल मुक्ता चुगे, हंस का स्वभाव है कि वह मोती, यहाँ मुक्ताहल का अर्थ है मुक्ति का फल। कबीर कहते हैं कि जब आत्मा को अपने भीतर ही मुक्ति के मोती मिल जाते हैं, जब उसे परम आनंद का अनुभव हो जाता है, तब अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह हंस उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, अब दुनिया के कंकड़ पत्थर उसे लुभा नहीं पाते। यह दोहा हमें सिखाता है कि जिस दिन आपको अपने अंदर का सुख मिल गया, उस दिन आप बाहर की दुनिया के गुलाम नहीं रहेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं कि असली तीर्थ आपके भीतर है। जब आपका ध्यान अंतर्मुखी होकर स्वयं में टिक जाता है, तब आपको वह सब कुछ मिल जाता है जिसे आप सात समंदर पार खोज रहे थे। दोस्तों, आज खुद से पूछिए, हमारा मन कहाँ कहाँ उड़कर भटक रहा है? क्या हम अब भी बाहर की छोटी छोटी चीज़ों में सुख के मोती ढूंढ रहे हैं? आज कोशिश कीजिए थोड़ी देर मौन रहकर अपने भीतर के उस मान सरोवर को महसूस करने की। याद रखिए, जब तक आप बाहर की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे, प्यास बनी रहेगी। जिस दिन आप अपने भीतर डूबेंगे, उस दिन आपको वो मोती मिलेंगे कि फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी उड़ान आपके भीतर ही समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं।

भजन में प्रत्येक पंक्ति में एक सुंदर शिक्षा दी गई और इस भजन को सुनने का आनंद तभी है, तभी कोई अर्थ है, इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

0: केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: जाने वो कैसे

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी।
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: पापा का पासे
1: हाय मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,